0: अनाउंसमेंट्स नहीं हैं आज हमारे पास, तकरीबन एक दो तीन चार अनाउंसमेंट हैं। तो चार अनाउंसमेंट सुना के आपके सारे गाने लगा देंगे फटाफट। ओके आई थिंक वी गोना प्ले लॉट ऑफ सॉन्ग्स टुडे होपफुली विद इन वन आवर, जितने लगा सकेंगे उतने लगाएंगे जी। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैं अपना काम करके शायद निकल जाऊं और आपके बाकी के फिर गाने जो है नॉन स्टॉप चला दूंगा। आपके वो जो डेडिकेटेड टू इनके लिए उनके लिए वो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने लगें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी। पहला अनाउंसमेंट, दिस इज रिसीव रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग। हांगकॉन्ग में महिलाओं में सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है तो रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। बहुत सी महिलाओं जिनको HPV वायरस है या कैंसर शुरुआती स्टेज में है, उनको कोई लक्षण नहीं दिखते। याद रखो, चाहे वो लक्षण ना हो, HPV वैक्सीन लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो, तब भी स्क्रीनिंग करवानी बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग करवाने के लिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स, फैमिली डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या NGOs के पास जा सकती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग के लिए कॉल कीजिए 3166-6631। जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स में HPV सेल्फ सैम्पलिंग की सुविधा शुरू हो गई है। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो है ये, हांगकॉन्ग आइलैंड के लिए है 2855-1333, कालोन के लिए है 2855-1222, न्यू टेरिटरीज के लिए है 2851-1722। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप www.cervicalscreening.gov.hk पर जा सकते हैं। अपना ख्याल रखो, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ। ओके, आते हैं जी हमारे पहले गाने पर। ये सुख ब्रार ने गाना रिक्वेस्ट किया है, एंड दिस इज फॉर चार्ली एंड राणा, और गाने का नाम है जी सोलो बाय हार्वी। एंजॉय द सॉन्ग।
1: Harvey for a reason.

All right, guys, coming on to our second announcement. This is child protection, prevention of child abuse and domestic violence and positive thinking. 20 जनवरी 2026 से मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड अब्यूज ऑर्डिनेंस लागू हो गया है. सोशल वेलफेयर, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर के 25 कैटेगरीज के प्रोफेशनल्स को अब लॉ के हिसाब से सीरियस चाइल्ड अब्यूज के सस्पेक्टेड केसेस रिपोर्ट करना जरूरी है. जल्दी डिटेक्शन और इंटरवेंशन से बच्चों के लिए बड़ा और मजबूत प्रोटेक्शन नेटवर्क बन सकता है. मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड अब्यूज बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. ऑलरेडी बढ़ते हैं जी अगले गाने पर. दिस वन इज रिक्वेस्टेड बाय रूबी फॉर साकी एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज किन्ना प्यार कर दी. हाँ, सो एंजॉय द सॉन्ग.

ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। आते हैं जी हमारे तीसरे अनाउंसमेंट पर। दिस इज रिसीव कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग। आज ही कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। हांगकांग में अंतर का कैंसर बहुत कॉमन है, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको जल्दी पकड़ सकते हो और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाओ। शुरुआती स्टेज में इस कैंसर के कोई लक्षण नहीं दिखते, इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। 50 से 75 साल के हांगकांग रेजिडेंट्स जो अभी ठीक हैं, उनके लिए

0: स्क्रीनिंग फ्री हो सकती है, अगर रिजल्ट नॉर्मल आए तो हर 2 साल बाद फिर स्क्रीनिंग जरूर करवाओ। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.colonscreen.gov.hk पर। हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना होगा? रोज एक्सरसाइज करो, दिन में 2 बार फ्रूट और 3 बार सब्जी खाओ, अपना वेट हेल्दी रखो, स्मोकिंग और शराब छोड़ दो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, आज ही स्क्रीनिंग करवाओ। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग। आई थिंक दिस वन इज रिक्वेस्टेड बाय गुरप्रीत और या डेडिकेटेड टू जितेंद्र सिंह। और ये जो गाना है, गाने का नाम है सी वॉक बाय नबान संधू। एंजॉय द सॉन्ग।
1: Can't discuss them power moves if people are not as hungry. It just sounds like you're bragging. Not a brother like.

0: it's done.
1: All right, guys, welcome back. आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर. This is prevention of seasonal influenza, COVID-19 and other respiratory illnesses. इस सीजन में अलर्ट रहो, फ्लू, COVID-19 और सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं. अच्छी पर्सनल और घर की सफाई रखो, पर्सनल हाइजीन और घर की सफाई रखो. खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक ढक लो. हाथ को लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकंड्स तक धो लो. बीमार फील हो तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से मिलो. गवर्नमेंट का 2025 और 26 फ्लू वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है. हर साल वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर. एलिजिबल लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है. COVID-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे केयर होम्स वाले, 65 साल के बुजुर्ग और 65 साल के ऊपर के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के क्रॉनिक पेशेंट्स, इम्यूनिटी कमजोर लोग और प्रेग्नेंट महिलाएं. ज्यादा जानकारी के लिए आप www.chp.gov.hk पर जा सकते हो. अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो. ऑलराइट गाइस, ये जो गाना लगने वाला है वो अमृत संधू का है. अमृत संधू ने रिक्वेस्ट किया है. प्रेम ढिल्लो का गाना है और गाने का नाम है जी पुत जम तिलाओ. एंजॉय द सॉन्ग.

ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक. ये जो गाना अभी लगाया था वो अमृत संधू ने रिक्वेस्ट किया था अपने दोस्तों के लिए. अमरीका भाई, पंकज वीर, पंज ग्राई, अफनान पठान, हाँ उनके लिए. ऑल राइट, अगला गाना जो लगने वाला है वो जो रिक्वेस्ट किया है वो खान भाई ने रिक्वेस्ट किया है. पुत बेगाने लब हीरा सिंगर है और डेडिकेट किया है वाली जान बसु चट बरार सिंह अमरीका भाई. एंजॉय द सॉन्ग गाइस.

ऑलराइट गाइस, अगला गाना जो लगने वाला है वो मलिक जैन ने रिक्वेस्ट किया है, और गाने का नाम है ट्रस्ट मी आई नो बाय बिग बॉय डीप, और मैसेज है डेडिकेटेड टू माय फ्रेंड इन प्रिजन। फ्रेंड का नाम है बिलाल एंड पप्पू एंड मिर्जा। तो हाँ जी, थैंक यू ब्रो। ओके चलो गाना एंजॉय कीजिए। दिस इज ट्रस्ट मी आई नो बाय बिग बॉय डीप। एंजॉय द सॉन्ग।

और गाइस मैं लेता हूँ जी अभी आप सबसे अलविदा, क्योंकि शुरुआती में मैंने बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो पहला हाफ तो मैंने कर दिया जी, अभी बाकी का जो हाफ है वो नॉन स्टॉप गाने लगने वाले हैं, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आने वाली। सो आई विल जस्ट टेल यू ब्रीफली कि कौन कौन से गाने किस किस ने रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन वो जो आपके मैसेजेस है वो मैं नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी। तो अगला गाना जो लगने वाला है, इट्स सजना बाय यशिल शाहिद, इट्स रिक्वेस्टेड बाय अनोनिमस, द पर्सन डज नॉट वॉन्ट्स टू बी नेम्ड, सो वी रिस्पेक्ट दैट। उसके बाद मलिसा ने गाना रिक्वेस्ट किया है, एंड गाने का नाम है डेथ रो निंजा, इट्स बाय निंजा दीप चंदू एंड जे हिंद। उसके बाद कल्पना ने रिक्वेस्ट किया है गाना ड्रिपी बाय सिद्धू मूसेवाला, देन वी गॉट सोनिया कौर हु रिक्वेस्टेड गॉड स्पीड बाय टाइसन सिद्धू, देन वी गॉट यासीन हु रिक्वेस्टेड स्विचिंग लेंथ बाय तेगी पन्नू, देन वी गॉट मलिक बाबर बाय मासूम शर्मा। फिर आते हैं जी ब्रूनो के पास, ब्रूनो ने रिक्वेस्ट किया है पुरबाश बाय नोमी चाट। अंत में आएगा गाना सनी सिंह ने जो रिक्वेस्ट किया है गाना, वो है ऑफ रोडिंग एंड खान जो है खान बैनी का। एनीवाइज मैं लेता हूँ जी आप सबसे अलविदा, तो मिलते हैं जी अगले फ्राइडे सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के जी जी चिल करो, टेंशन न लो, ते चढ़ती कला च रहो, रब राखा, गुड नाइट एंड गुड बाय एंड एंजॉय दिस सॉन्ग, दिस इज सजना बाय यशल शाहिद, गुड नाइट।